ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की हुकूमत ने एक बिल की मंजूरी दी है जो बुनियादी तौर पर असर नौ समाहत के अदालती फैसलों के खिलाफ इस्तगासा को अपील करने से रोक देगा। जुमे के रोज़ काबीना के इजलास में ज़ाबता फौजदारी में नजरसानी के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। इस्तगासा को अपील दायर करने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब उनके पास काफ़ी बुनियादें मौजूद हों। बिल के तहत इस्तगासा को बिला ताखीर यह बताने की ज़रूरत है कि आया उन्होंने अपील दायर कर दी है या नहीं, और अगर ऐसा किया गया है तो क्यों। जब अपीलें दायर कर दी जाएं तो अदालतों को एक साल के अंदर ये तय करने की कोशिश करनी चाहिए कि आया इन्हें मंजूर करना है या मुस्तरद। ये बिल एक नई शिक शामिल करेगा जिसके तहत जजों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इस्तगासा को असरे नौ समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की वजूहात से मुतालिक शवाहिद जाहिर करने का हुक्म दें। मुसव्वदा कानून में ये भी कहा गया है कि जजों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस्तगासा के ज़रिए जाहिर किए जाने वाले शवाहिद का दायरा गैर माकूल हद तक महदूद नहीं है। ज़ाहिरशुदा शवाहिद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। खिलाफवर्जी करने वालों को एक साल तक की कैद या 5 लाख येन तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा जो लगभग $3,100 बनते हैं। मुसव्वदे में तरमीम शुदा कानून के नफाज के बाद अगर ज़रूरी समझा जाए तो हर 5 साल में एक बार नजरसानी का कहा गया है। होंडा मोटर ने माली साल 2025 के लिए भारी ग्रुप नुकसान दिखाए हैं जिसकी बड़ी वजह इसकी ईवी हिकमत अमली में कमी है। इस जापानी कारसाज कंपनी का कहना है कि हिस्स मंडी में अंदराज के बाद ये पहला मौका है जब इसकी पूरे साल की आमदनी खसारे में चली गई है। मार्च में ख़त्म होने वाले साल के लिए पैदावारी नुकसान 414.3 बिलियन येन यानी $2.6 बिलियन रहा। खालिस नुकसान 423.9 बिलियन येन तक पहुंच गया। होंडा के मुकम्मल तौर पर बरकी गाड़ियां बनाने के अजायम

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे वायला कावानो और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने शुक्रवार दोपहर को प्रीति भोज पर मुलाकात की। ट्रंप शुक्रवार को ही अपनी चीन यात्रा संपन्न कर अमरीका लौट जाएंगे। दोनों नेताओं ने मध्यवर्ती बीजिंग में स्थित जोंग नानहाई परिसर में मुलाकात की, जहां चीनी नेताओं के कार्यालय स्थित हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार को शिखर बैठक के दौरान ट्रंप और शी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें चीन में अमरीकी व्यवसायों के लिए व्यापक पहुंच और अमरीका में अधिक चीनी निवेश शामिल है। चीन का कहना है कि व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि शी ने 200 बोइंग जेट विमानों का ऑर्डर देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने शी के हवाले से कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं और वे ईरान को सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे। ट्रंप ने इसे एक बड़ी बात बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान का मुद्दा चीन अमरीका संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शी ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे में लापरवाही बरती गई तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे समग्र संबंध गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अमरीका की घोषणा में ताइवान का उल्लेख नहीं किया गया। जापान सरकार प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बारे में फोन पर बातचीत कराने की व्यवस्था कर रही है। सरकार चाहती है कि ये बातचीत ट्रंप के शुक्रवार

कार को बीजिंग से रवाना होने के बाद हो। जापान सरकार के एक सूत्र का कहना है कि टोक्यो ये जानने के लिए उत्सुक है कि अमेरिका और चीन ने ताइवान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों तथा दुर्लभ धातुओं पर चीनी निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में क्या चर्चा की। एनएचके को पता चला है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने फिलीपींस को सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के निर्यात के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार मनीला ने इस महीने की शुरुआत में टाइप 88 मिसाइलों को हासिल करने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि मंत्रालय थल आत्मरक्षा बल GSDF के मौजूदा शस्त्रागार से इन मिसाइलों के निर्यात पर विचार कर रहा है। GSDF टाइप 88 मिसाइलों का उपयोग उत्तरोत्तर बंद कर उन्हें एक नए मॉडल से बदलना चाहता है। टाइप 88 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। SDF कर्मियों ने अप्रैल से मई तक फिलीपींस में आयोजित एक अभ्यास में इस मिसाइल का उपयोग किया था। अमरीकी सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यूक्रेन के आपात अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार तक रूस द्वारा किए गए व्यापक हमलों में राजधानी कीव में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा ने शुक्रवार को मृतकों की नई संख्या की घोषणा की। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि देश पर किए गए रूसी हमलों में 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें शामिल थीं। कीव के दारनीत्स्की इलाके में एक मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट इमारत नष्ट हो गई। पुलिस और बचावकर्मी मलबा हटाते और लापता लोगों की तलाश करते देखे गए। रूस का कहना है कि ये व्यापक हमले जवाबी कार्रवाई थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेनी बलों के काम आने वाली ईंधन एवं परिवहन अवसंरचना तथा अन्य लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत किसी मामले की पुनः सुनवाई शुरू करने के अदालती फैसलों के खिलाफ अभियोजक बुनियादी तौर पर अपील नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के मसौदा संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत अभियोजक तभी अपील दायर कर सकेंगे जब उनके पास ऐसा करने का ठोस आधार होगा। इस विधेयक के तहत अभियोजकों को बिना विलंब ये खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने अपील दायर की है और अगर की है तो क्यों। अपील दायर होने पर अदालतों को एक वर्ष के भीतर ये तय करना होगा कि अपील स्वीकारी जाए या नहीं। इस विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को दोबारा सुनवाई के अनुरोधों के कारणों से संबंधित साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए अभियोजन पक्ष को आदेश देने का अधिकार होगा। विधेयक के मसौदे में ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभियोजकों द्वारा पेश साक्ष्यों का दायरा संकीर्ण न हो। सार्वजनिक किए गए साक्ष्यों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष तक की कारावास की सजा या 5,00,000 येन यानी करीब $3,100 तक का जुर्माना हो सकता है। मसौदे में संशोधित कानून के लागू होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर हर 5 साल में एक बार समीक्षा किए जाने का आह्वान किया गया है। होंडा मोटर को वित्त वर्ष 2025 में भारी सामूहिक घाटा हुआ है जिसका मुख्य कारण कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में संशोधन है। इस जापानी वाहन कंपनी का कहना है कि सार्वजनिक होने के बाद से ये पहली बार है जब उसकी वार्षिक आय में घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के लिए परिचालन घाटा 414.3 अरब येन यानी $2.6 अरब रहा। शुद्ध घाटा 423.9 अरब येन रहा। होंडा को सबसे अधिक नुकसान ईवी योजनाओं को रद्द करने, ईवी मॉडलों को बाजार में न उतारने और उत्तर अमेरिका में परियोजनाओं को रोकने के फैसले से हुआ है। अमेरिकी शुल्कों का भी कंपनी के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। होंडा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में उसे लाभ होने की उम्मीद है। सुजुकी मोटर का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 439.2 अरब येन यानी लगभग $2.8 अरब पहुंच गया। भारत में मजबूत बिक्री इस उछाल के प्रमुख कारणों में से एक रही। जापान की इस वाहन निर्माता कंपनी ने बृहस्पतिवार को मार्च में समाप्त कारोबारी वर्ष के वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी ने बताया कि आमदनी बढ़कर लगभग 63 खरब येन यानी लगभग $40 अरब रही जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 8% अधिक है। शुद्ध लाभ में 5.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि न केवल सुजुकी के मुख्य बाजार भारत में बल्कि जापान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में भी मोटर वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण हुई। कंपनी अध्यक्ष सुजुकी तोशिहिरो ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद अनिश्चित है लेकिन मोटर वाहनों के उपयोग के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।